0: विरसे दी पुक्कलचों यादां दे संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
1: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
0: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
2: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
1: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
3: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिब आवे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी
1: 9054595533
2: 905-459-5533
1: PNJ Spring Wheel Alignment।

0: 8877sofastudio.ca. Thank you, Jee.
1: रात हमें छड़ देनी है पर जनाब चले कितने हो
2: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे कर देने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
1: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
2: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते बड़े ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9898
3: मैं नवा कार लिया है तेनु पता है प्रॉपर्टी इतनी महंगी है नाले मैं एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली है एक बाई मैं बेसमेंट भी बनाई है ब्रम्पटन वाले घर दी नाले मैं सोचता हूँ वॉशर एंड ड्रायर भी चेंज कर ही दईए हुन समझ नहीं आ रहा अप्लायंसेस कित्थों लईए
4: हो जी एदे च समझण वाली केड़ी गल है सारे कमां लई इक्को जगह चलो मिसेस अगर स्टील ते अप्लायंस जंक्शन ते इना दे प्राइस ते सर्विस नु कोई बीट नहीं कर सकदा तुसी 6 मंथ तक दी पेमेंट भी बनवा सकदे हो सारे ब्रांड्स दी ऑथराइज्ड डीलर्स भी ने मिसेस अगर The Appliance Junction. Call 905-450-0054. 905-450-0054.

0: जी हाँ मोटर कार का तो मालूम नहीं लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 647 702 V23 license number 10394।
1: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-765-2340।
2: You're listening to Guntas Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

मौसम देखिए, मौसम की कहता है, मौसम कहता है कि बड़ा ही खूबसूरत मौसम है, मोस्टली अज सनी डे रहना। ते जदों सनी डे हुंदा फिर क्योंकि बड़ी वेट करते हैं आप इन्ह दिनों की, सो वीकेंड ते भी मीह पैंदा रहा, ते फिर अज कल भी मौसम वधिया सीगा, अज भी एन कैंट मौसम है, मोस्टली अज सनी डे है। हाई अज 27 डिग्री तक चला जाना, ते लो जाना है जी 13 डिग्री सेल्सियस तक। थोड़ी बहुती बदलवाई हो सकती है 1 बजे के करीब, ते हवा 28 किलोमीटर पर आवर के हिसाब के चल रही है। वधिया मौसम है जी, इंजॉय करो अज के दिन। ते जे आप देखिए जदों शाम पैनी है ना, फिर बदलवाई शो हो रही है, सो लै लो दोपहर तक नज़ारा पूरा धुप्प का 1 बजे तक, वो तो बाद बदलवाई शो हो रही है। 8:48 सनसैट होना है। रात का टैंपरेचर भी वधिया, 20, 19, 18, 17, 16। कल सवेरे 5 बजे 16 डिग्री सेल्सियस, सो वधिया मौसम है जी। 16 डिग्री इन्नी मॉर्निंग दे विच, अर्ली मॉर्निंग च 16 डिग्री वधिया मौसम है। 5:43 ते कल सवेरे सनराइज होवेगा। कल नू बदलवाई सवेरे सवेरे शो हो रही है, पर फिर उस तो बाद जब अपना प्रोग्राम शुरू हो जाना, नाल ही फिर सूरज देवता जी दर्शन देंगे, सो मिक्स जहा रहूगा। कल बदलवाई भी है ते धुप्प भी है, सो वधिया मौसम है जी, करो इंजॉय अज दे दिन। ते 11 बजे तक गल्लां बातां थोड़ियां साडियां चलणगियां, ते नंबर हैगा गल्लां बातां करन दे लई 647-874-1313 ते गलबात थोड़ी साड़ी होगी। 647-874-1313 ते थोड़ी साड़ी गलबात स्टूडियो दे विच होवेगी जी। जदों मंगलवार हुंदा ना तां मेरी कोशिश हुंदी है भी थानू जरूर जिहड़ा भजन सुनाया जावे, पर जे बाई चांस कोई दिन कोई विशेष दिन हों फिर अपने वह गलबात करनी होंगी उदन रह जाता, अदरवाइज थोड़े लिए मैं जरूर भजन पेश करती हाँ। सो अज भी भजन बड़ा ही खूबसूरत सीगा जी, और हरिओम शरण जी की आवाज़ सी, सो उस साडे धार्मिक सैगमेंट में थोड़े तक पहुँचाया दुआबा ट्रैवल्स वाले ने। दुआबा ट्रैवल्स है दीपांश को तुसी कॉल करनी है जे तुसी चाहते हो ना बहुत वधिया कमाल दियां टिकटां ते सर्विस नंबर वन, फिर दीपांश को कॉल करनी है, क्योंकि दीपांश कहते हैं कि बड़े वधिया रेट ते टिकटां पहुंचियां हुई हैं। नंबर तुसी नोट कर लो, नंबर हैगा दुआबा ट्रैवल्स का, क्योंकि इंडिया नू जे जाना ना, हुण टिकटां बड़े वधिया रेट ते मिल रही हैं, अगे जाके महंगियां हो सकदियां, सो हुणे तुसी बाय करो। कदे भी तुसी जाना है हुण छुट्टियां च दसंबर तक, कोई भी डेट तुसी दसो ते उही टिकटां थानू मिल जाणगियां। 905-673-1400 905-673-1400। सो लो जी, करदे आ थोड़े नाल गलबात। ते अज मैं ना न्यूज़ दे विच इक देख रही सीगी कि एक तां जदों आपां टिकटां बुक कराउंदे आ ना, ते वो तो चलो मैं नंबर देता 905-673-1400, मेरा ध्यान उधर ही है। टिकटा एक तो चलो जाण आउण दियां टिकटा हो गया है ना, एक पार्किंग टिकट भी हुंदी है। सो जदों भी कोई भी किते भी थानू टिकट मिल जावे ना, तो उन्होंने जल्दी पे कर दिया करो। क्यों? क्योंकि एक जिहड़ी न्यूज़ है उहदे विच एक व्यक्ति का लाइसेंस ही कैंसल हो गया, सस्पेंड हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें पार्किंग टिकट उन्हें मिली हुई सीगी कई दहाकियां दी, किन्ने साल हो गए उन्हें। दहाका की हुंदा है? 10 साल तो उपर का समा, तो किन्ने दहाके मीनस कि 10 तो 20, 20 तो 30, पता नहीं किन्ने साल हो गए। तो उहदी करदे आ आपां गलबात कि कदों की टिकट उन्होंने मिली। सो ओंटेरियो का एक व्यक्ति है, उन्होंने कई दहाकियां पुराना यानी कि डेकेड ही हो गए उन्होंने टिकट मिली हुई सी पार्किंग की, ते उन्हें पे नहीं की। मे बी उन्होंने पता नहीं होगा कई बार। अच्छा इदा भी होंगे कि जिमें हम पार्किंग की टिकट वह अगे वाइपरस से लटका जाते हैं ना, वो फसा जाते हैं, तो बाई चांस हवा हुआ चल रही है तो इधर उधर उड गई, बंदे पता ही नहीं तो वह किमें पे करेगा। कदे थोड़े नाल भी इदा होया कि कोई तुसी टिकट थानू मिली होवे, चाहे पता भी होवे? कई बार कईयां दी वैसे ही भुल भल जांदे आ ते नहीं पे करदे, ते कदी कोई थानू इदां दे समें दा सामना करना पिया। सो इह व्यक्ति नू जिहड़ी टिकट मिली सीगी वो इहने पे नहीं कीती, ते $32.75 इहने पे करने सीगे, पर

0: IPL चल रहा है ओनली ऑन करो स्ट्रीम. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: यार इना इंश्योरेंसा ने ते तू अगड़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा?
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने.
3: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स. जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानूं अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे.
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नूं 647-300-3100-310
3: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन.
4: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी. ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्क ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन. ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟ ਲੈਂਡ 905-456-9900. इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेरों खुशियां. इन खुशियों का स्वागत कीजिए इंडिया सजावट एंड पूजा हट से श्री गणेश जी के ब्यूटीफुल ड्रेसेस लेकर दुर्बा फ्लावर्स इको फ्रेंडली स्टैचूज जो हो जाए क्विकली डिसॉल्व इन वाटर. तो इस बार सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं खुशियों की भी आराधना कीजिए. इट्स ऑल अंडर GTA's बिगेस्ट डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808.
5: Hi, this is Harpreet Singh from Top Choice.

What a song, man! I really love it. Punjabi Virsa, next call the Janaya. Traffic jam, hi milna Punjabi Virsa to anu. Hello. Hello, ji. Sasi kaal, sir, kya hal hai? छोड़ दिया उनको ये कह के तू बेवफा नहीं हरजीत जी, हरजीत जी छोड़ दिया उनको ये कह के तू बेवफा नहीं, बैठे थे अकेले तन्हा में तो सोचा, ओ मेरी जान आपने तो वफा भी नहीं की।

कैसे लिरिक्स है यार गीते पाना तुझको मुश्किल सही पाने को कंधा फिर भी कंधा मैं तरस जाता हूँ पाना तुझको मुश्किल ही सही पाने को तरस जाता हूँ वाओ।

0: swing into golf season with AM 530 at the MCPA 33rd Annual Golf Tournament, June 10th at Piper's Heath Golf Club. Sponsored by Betty Systems, Avenue Building Group, Liuna Local 183, Liuna Central and Eastern Canada, LSJ Services, and AM 530. Registration fee, support community services, and includes 18 holes of golf, power cart, prizes, lunch, and dinner. MCPA, meaningful interactions create benevolent acts. Register now or donate at micba.com.
1: 32, 55, 80
2: 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: This is AM 530.

0: गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी 2 बजे तक नेशनल इंटरनेशनल खबरां नाल जोड़ के रखिए। अगे चल के किरण जी वतनों दूर तुहाडे लई प्रोग्राम पेश करनगे। कुछ खुशखबरी आ, वह भी अगे जाके सांझी कीती जाएगी। साडे इंडिया दे डिप्लोमैट इत्थे आए आ, वह की बोली जांदे आ उन्हां दी भी गलबात कीती जाएगी। सब तो पहला छतरी छता रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:42 ते आया, शाम नूं 8:46 ते चले जाना। मामा चांसो अगे चल के 4:29 ते आएगा, ते सवेरे 3:08 ते चले जाएगा। अज दा तापमान 25 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड, चखड़ चोले थंडरस्टॉर्म ते बारिश पेगी। कल नूं तापमान 25 डिग्री, मिक्स ऑफ सन एंड कलाउड ते हल्की जी बारिश पेगी। थर्सडे नूं टेम्परेचर 22 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकेगा। फ्राइडे नूं 23 डिग्री, सारा दिन सूरज चमकेगा। सैटरडे नूं 22 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। और संडे नूं 24 डिग्री, सूरज चमकदा रहेगा। कल दलजीत दसांझ दीआं 2 टिकटां असीं प्रभजोत नूं कढ़तीआं सी, थैंक यू। उन्हां दा बाद च वी फोन आया, बहुत सारे लिसनर दा फोन आउंदे ही रहे, सारी दिहाड़ी वी टिकटां दे दो सानूं, टिकटां दे दो। दो सिंघां भाई जी, दो इक नूं देणीआं सी, उह देतीआं, साडे कोल होर टिकटां नहीं है। सो इस करके सैल फोन ते जां कितें होर फोन ते करन दी लोड़ नहीं। वैसे कोई खास गल करनी है तो अपने स्टूडियो के नंबर ने 905-799-0999, 905-799-0999। स्पोर्ट्स दे विच कल कनेडियन जिहड़ी हॉकी टीम आ ओवरटाइम च हार गई, सो सीरीज 2-1 नाल इह पिछे ने। ब्लू जे वाले बहुत वधिया खेले, बड़ी बहादुरी नाल खेडदे हुए 8-2 दे फर्क नाल हार गए। और इस समय क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, जाने आने स्टे ट्यून।
1: महीने मकैनिक नु पैसे दे दंदे हो, ट्रक खरीदे आया मकैनिक नु गोद ले लिया।
2: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक तो रोज नखरे करता है।
1: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
3: वधिया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक वेचना होवे या खरीदना, रेट बिल्कुल वाजिब लौंदे ने।
1: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध।

0: 32, 55, 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551।
2: स्टडी वीजा, एक्सप्रेस एंट्री, कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री, स्पाउसल फाइल, पेरेंट्स पीआर, सुपर वीजा, नैनी, वर्क परमिट, फार्मर, इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल। बल्कि इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो।
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही नाम अते इको ही थां, CIC इमिग्रेशन। हुणे ही कॉल करो 416-456-6161।
4: ਡਰਾਈਵਰੀ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ
5: ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

यार वाह वधिया खूबसूरत मौसम है जी। ड्राइव कर रही हूँ, विंडोवां डाउन कर लो, सनरूफ खोल लो, अरमानी दियां ऐनकां पा लो ते वधिया पंजाबी लहरां सुणदे जाओ। हुण जे रेड लाइट ते खड़े हो ते विंडोवां डाउन ने तुहाडे नाल दी गड्डी नूं पता लगे कि चलो AM 530 ते पंजाबी लहरां नाल तुसीं जुड़ चुके हो। ते इस तों वध यार मशहूरी की हो सकदी है। मैनूं याद है कि ना मैनूं इक वीर दा फोन आया, उह कहिंदे कि ना वी मैं गैस भरन गया गैस स्टेशन ते, ते कहिंदे वधिया मौसम सी, डोर खुला ते विंडो भी थले, थोड़ा प्रोग्राम चल रहा सी। कहिंदे मेरे नाल एक मुंडा खड़ा ते ओह भी थोड़ा ही प्रोग्राम सुन रहे सी। असीं एक दूजे वल देखिए कि अच्छा तू भी पंजाबी लहरां सुन रहा है। मैनूं बड़ा यार एक माण होया, बड़ी खुशी हुई कि दोनों जाने इकट्ठे देखो तुसीं प्रोग्राम सुन रहे ते वधिया इंजॉय कर रहे। ते एक कोइंसिडेंस जदों हुंदी है ना तां फिर इहदी वी रीस कोई नहीं। सो 905-673-3337 नंबर अपना, 905-673-3337 ते करदे आं गल्लां बातां, लाउने आं रौनकां ते पंजाबी लहरां नाल तुसीं जुड़ चुके हो। ते आ जाओ फिर, की प्लान है, की अज खा पी रहे हो, कित्थे जा रहे हो। 905-673-3337 अपना नंबर है, 905-673-3337 905-673-3337।